0: बस सर्विसेज और तामीराती काम मुअत्तल करने और ख़तरे से पूरे इलाकों के रिहायशियों को मुंतकिल करने पर मजबूर होना पड़ा है। शहर में 300 से ज़ायद सियाहती और कैंपिंग मकामात बंद, 4,100 से ज़ायद मुसाफिर खानों की सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। जिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने इत्तला दी है कि तकरीबन 250 बस रूट्स को बंद कर दिया गया है, तो 10 सबवे लाइनों पर चलने वाली ट्रेनों को कम रफ्तार पर चलाने का हुक्म दिया गया है। सियाहत के लिए चलने वाली तमाम कश्तियों की सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि पहाड़ी देहातों, नशीबी इलाकों और सैलाब और ज़मीनी आफात के खतरात के हामिल दीगर मकाम के रिहायशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मंगल दोपहर से बुध की सुबह तक बीजिंग में औसतन 23.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हंगामी सैलाब कंट्रोल इकदाम के तहत शहर भर के 3,357 तामीराती मकाम को काम मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया है और इजाफी गुंजाइश बनाने के लिए आबी जखायर को खोल दिया गया। कौमी मौसमियाती मरकज़ ने बुध को ज़ोरदार बारिश के लिए अपना नारंगी अलर्ट जारी करते हुए मुल्क के वसी हिस्से में जुमेरात की सुबह तक शदीद बारिश की पेशगोई की है।
1: इसके साथ ही सदाए तुर्की खबरें खत्म हुई।

शायद कुछ शहर सिर्फ आसमां की तरफ ही नहीं फैलते, कुछ शहर अपने हाफिजे को जमीन के नीचे छुपा कर रखते हैं। आज हमने अलकुदस की जेर जमीन तहों का एक छोटा सा सफर इकट्ठे तय किया। हमने उन कहानियों पर कान धरे जो ये पत्थर सुनाते हैं, और हमने देखा कि एक शहर के नीचे दरअसल कितने शहर आबाद हो सकते हैं। लेकिन इस सरजमी का हाफिजा सिर्फ जमीन के नीचे ही तो सांस नहीं ले रहा, यह कभी किसी कारीगर के नीले और सख्त हाथों में, कभी सदियों से ना बदलने वाले किसी हुनर में, और कभी सब्र के साथ परवान चढ़ने वाले जैतून के दरख्त के साए तले अपनी जिंदगी बरकरार रखे हुए हैं। चुनाचे अगले हिस्से में हम जमीन के नीचे से निकलकर उन कारीगरों के हाथों को छुएंगे। हम फलस्तीन के उन कदीम फ़नून, मेहनत और उस मिटाए ना जाने वाले सकाफ़ती हाफिजे के नकूश तलाश करेंगे जो सदियों से जिंदा हैं। अगली किस्म में दोबारा मुलाकात होने तक हम फलस्तीन की अन छुपी हुई कहानियों को बेनकाब करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियां।